0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: DC Studios boss James Gunn has officially shut down speculation regarding the production timeline of Matt Reeves' upcoming Gotham sequels. James Gunn clarified during a Threads Q&A session that The Batman Part 2 will not be filmed back-to-back with The Batman Part 3. Warner Brothers has scheduled the theatrical release of The Batman Part 2 for Feb 18, 2028.
7: City FM 89.
8: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं ईजी पैसा डिजिटल बैंक ईजी वाला

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं ईजी पैसा डिजिटल बैंक ईजी वाला बैंक

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
0: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future.
4: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
5: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight.
6: Hold on! Special delivery coming through!
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
10: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi, Jazz Cash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. Aur 1000 rupay ke behtareen discount se fayda uthao. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: We're playing your song.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: City FM 89,
6: your drive along companion.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM
4: 89.
5: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना.
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
9: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
10: At shopping of 5,000 rupees
9: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
11: मंजिल अभी बाकी है. हौसला जवान, अज़्म मजबूत और सफर रवां है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है. हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया. SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है. जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है. SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं. तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सखर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स. खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गई. इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया. शाहराह भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है. जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली. जरिए खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया. बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, जरिए अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है. पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ जरई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है. धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सी पैक के तहत जदीद सनती मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है. खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है. सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया. रेड बस पाकिस्तान की पहली ईवी बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है. तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है. नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर, اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
0: City 89.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.
12: No talk.
13: Just you
12: and the music.
13: Back to back
12: starts now.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
4: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media initiative.
5: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
7: City FM 89.
8: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
1: You're listening to
9: Beat Camp.

0: to Your Road Rage.
1: Your Road Rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 PM.
4: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक.
5: सिटी FM 89.
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
7: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
8: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
9: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite.
10: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
11: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
12: Beach Camp.